0: 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं।
1: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है। लोकतंत्रवादी नहीं है आप, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है।
2: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The Granule Party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra, Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
3: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
4: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना उनके बीच। हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था। काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है। तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
5: मैम, मैं काफी रिलैक्स था, मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा। और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया।
4: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश दबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश दबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
5: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत के आए।
4: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
5: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डूसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
4: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
6: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया, और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
4: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
6: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे
4: जी।
6: तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी ना, तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेन जी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
3: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam body chief Umair Ahmed Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
7: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words: "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
8: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनके जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
9: ये इस प्रकार के बयान हिंदू देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर आया उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
10: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे।
11: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
12: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं। वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
13: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
3: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
14: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
15: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
16: في الأماكن المستهدفة
14: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish Foreign Minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one of the world's most important maritime routes, connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. This makes the chokehold even more critical. The shortest maritime routes connecting West Asia to the rest of the world revolve around 3 key choke points. The Suez Canal, a narrow but vital passage for global shipping. The Bab el-Mandeb Strait, which the Houthis have threatened to disrupt. And the Strait of Hormuz, which Iran has said will remain closed until its conditions are met.
16: Today on the diplomatic front as well, our positions are completely clear, rational and non-negotiable. Our messages and conditions have been conveyed explicitly to the other side through intermediaries and the enemies know full well that the path of deception and unilateral imposition is closed. And until these conditions are met, the inalienable rights of the Iranian nation are recognized and the Americans fulfill their commitments, there will be no possibility of a return to the previous negotiation framework or to reopen the Strait of Hormuz.
14: And it's not just that. US President Donald Trump has cut short his visit to Camp David and rushed back to Washington as tensions continue to escalate. The US State Department and American embassies across West Asia have also issued security alerts. This is where the West Asia crisis meets the global economy. The question is no longer where the next strike will come from, but how far its consequences will spread. Bureau Report, India Today.
3: From the world of entertainment, this is a controversy that has indeed taken center stage. It's Katrina Kaif who's at the center of this trolling storm. After she recently was spotted in public, trolls started targeting her looks and body, even questioning her beauty. Amid the backlash, it's Salman Khan who appeared to indirectly come out in support of Katrina Kaif during a recent Big Boss Weekend Ka Vaar episode. Let's take a look.
17: Once known for her fitness, now being trolled for her post-pregnancy weight. For years, Katrina Kaif has been known for her fitness and her carefully maintained on-screen image. But after becoming a mother, the conversation around the actress has taken a very different turn. Instead of talking about her post-pregnancy glow or even her motherhood, social media users started body-shaming her. And now, two of her former co-stars, Salman Khan and Ali Zafar, have spoken out against the trolling. Katrina Kaif recently stepped out with husband Vicky Kaushal at an Ambani family's Ganesh Chaturthi celebrations. And a section of social media began commenting on a post-pregnancy weight gain. And the body shaming quickly became a talking point online. Katrina herself has not responded on the trolling so far. But someone who did speak up was her longtime friend, Salman Khan. On the latest Big Boss 20 Weekend Ka Vaar, Salman spoke about the way celebrities, especially women, are targeted for their appearance. And while he did not take Katrina's name, his comments came right in the middle of the backlash she was facing. Salman questioned why a woman should be trolled simply because she gained weight after pregnancy. His point was simple, that pregnancy changes a woman's body and there should not be an expectation that she immediately return to her pre-pregnancy appearance. But Salman wasn't the only one to call out the trolling. Pakistani actor and singer Ali Zafar, who worked with Katrina in Meri Brother Ki Dulhan, also came out in a support. In a video addressing the issue, Ali Zafar said that society needs to look inward and question the standards it creates for women's bodies. Meanwhile, Katrina's fans have also pushed back against the trolling. Many users have reminded people that pregnancy and motherhood naturally bring physical changes and that a woman's body does not need to look the same before and after childbirth. Because after years of seeing actresses judged for being too thin, too heavy, too old, too young, the question is not really about Katrina's weight. It is about why a woman's body becomes public property the moment she steps into the spotlight. Bureau Report, India Today.
4: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates on the top stories through the evening. Thank you for watching.
18: You are watching India Today.

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIR row, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम है और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधीज छात्रों की गूंज हैज नाउ स्टेप्ड इनटू अ न्यू पॉलिटिकल अरेना एट द इंदौर सेशन राहुल गांधी वाज सीन ऑन अ स्टेज विथ अ कॉमेडियन where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: Aur bataiye. Ha? Aur bataiye thoda. Maa ko kursi do. Maa. Maa.
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
5: Aur bataiye, ha? Aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma. Ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
5: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
7: एक चीज पूछ सकता हूं?
5: हाँ.
7: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
8: राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
9: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
10: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
11: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप. लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The Granule Party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
12: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
13: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
12: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
13: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत गए।
12: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
13: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डूसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
12: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
14: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया, और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
12: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
14: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
15: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam Body Chief Umair Ahmed Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
16: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
17: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनकी जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
18: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे।

0: निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
1: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
2: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता, तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते हैं। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं। वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
3: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
4: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
5: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
6: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
5: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish foreign minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one

0: ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है। 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता, वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: ये SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा, देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा, तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है, वो कितना गलत प्रोसेस है।
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं, उसमें बड़े-बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है, जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है।
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ।
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
6: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
7: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
5: Aur bataiye, ha? Aur bataiye thoda.
6: Ma ko kursi do. Ma. Ma.
7: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
5: Inka pata nahi kahan se inke dimag mein ghus gaya. Ab ajeeb cheeze ghus jaati hai. But inke mind mein ghus gaya ki foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
8: एक चीज पूछ सकता हूं?
5: हाँ.
8: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
7: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
9: Rahul Gandhi ji, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
10: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
11: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात में. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
12: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप. लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको part of game samajhna padta.
7: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The grand old party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: This scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Student Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey with these twin campus exclusive, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
13: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
14: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
13: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट अनाउंस करी। उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है, लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
14: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की, और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत गए।
13: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
14: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डुसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
13: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
15: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया, और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
13: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
15: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
1: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam Body Chief Umair Ahmad Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
16: Jawaharlal Nehru's observation in an officers meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words: "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
17: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनकी जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
18: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
19: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
20: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
21: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं, वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं, भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
0: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
1: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
7: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
1: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
7: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish foreign minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one of the world's most important maritime routes, connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. This makes the chokehold even more critical. The shortest maritime routes connecting West Asia to the rest of the world revolve around 3 key choke points. The Suez Canal, a narrow but vital passage for global shipping. The Bab al-Mandeb Strait, which the Houthis have threatened to disrupt. And the Strait of Hormuz, which Iran has said will remain closed until its conditions are met.
1: Today on the diplomatic front as well, our positions are completely clear, rational and non-negotiable. Our messages and conditions have been conveyed explicitly to the other side through intermediaries, and the enemies know full well that the path of deception and unilateral imposition is closed. And until these conditions are met, the inalienable rights of the Iranian nation are recognized and the Americans fulfill their commitments, there will be no possibility of a return to the previous negotiation framework or to reopen the Strait of
2: Hormuz.
7: And it's not just that. US President Donald Trump has cut short his visit to Camp David and rushed back to Washington as tensions continue to escalate. The US State Department and American embassies across West Asia have also issued security alerts. This is where the West Asia crisis meets the global economy. The question is no longer where the next strike will come from, but how far its consequences will spread.
3: ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे.
1: From the world of entertainment, this is a controversy that has indeed taken center stage. It's Katrina Kaif who's at the center of this trolling storm. After she recently was spotted in public, trolls started targeting her looks and body, even questioning her beauty. Amid the backlash, it's Salman Khan who appeared to indirectly come out in support of Katrina Kaif during a recent Big Boss Weekend Ka Vaar episode. Let's take a look.
4: Once known for her fitness, now being trolled for her post-pregnancy weight. For years, Katrina Kaif has been known for her fitness and her carefully maintained on-screen image. But after becoming a mother, the conversation around the actress has taken a very different turn. Instead of talking about her post-pregnancy glow or even her motherhood, social media users started body-shaming her. And now, two of her former co-stars, Salman Khan and Ali Zafar, have spoken out against the trolling. Katrina Kaif recently stepped out with husband Vicky Kaushal at an Ambani family's Ganesh Chaturthi celebrations. And a section of social media began commenting on a post-pregnancy weight gain. And the body shaming quickly became a talking point online. Katrina herself has not responded on the trolling so far. But someone who did speak up was her longtime friend, Salman Khan. On the latest Big Boss 20 Weekend Ka Vaar, Salman spoke about the way celebrities, especially women, are targeted for their appearance. And while he did not take Katrina's name, his comments came right in the middle of the backlash she was facing. Salman questioned why a woman should be trolled simply because she gained weight after pregnancy. His point was simple, that pregnancy changes a woman's body and there should not be an expectation that she immediately return to her pre-pregnancy appearance. But Salman wasn't the only one to call out the trolling. Pakistani actor and singer Ali Zafar, who worked with Katrina in Meri Brother Ki Dulhan, also came out in her support. In a video addressing the issue, Ali Zafar said that society needs to look inward and question the standards it creates for women's bodies. Meanwhile, Katrina's fans have also pushed back against the trolling. Many users have reminded people that pregnancy and motherhood naturally bring physical changes and that a woman's body does not need to look the same before and after childbirth. Because after years of seeing actresses judged for being too thin, too heavy, too old, too young, the question is not really about Katrina's weight. It is about why a woman's body becomes public property the moment she steps into the spotlight. Bureau Report, India Today.
1: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates on the top stories through the evening. Thank you for watching.
22: Watching India Today.

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
1: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करेगी।

0: How are you?
1: I am fine. How are you, Modi ji?
0: Great harassment. Maa ko kursi do. Maa.
2: अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। मार्ग संकरा है तो पहले हम क्या करते हैं, किसी बुजुर्ग को, किसी महिला को, या कोई फिर दिव्यांग हो या कुछ इस प्रकार अपने सी उम्र में बड़ा हो, उनको कहते हैं कि पहले आप। कहीं बैठने की भी व्यवस्था हो तो हम क्या, हमारा संस्कार कहता है पहले आप, यानी मैं भले ही इंतजार कर लूं लेकिन आप उम्र में बड़े हैं, मेरा संस्कार कहता है कि मैं पहले आपको सम्मान दूं।
3: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
4: देखिए, एक अयोग्य व्यक्ति को कुर्सी दिलाने के लालच में कांग्रेस सर्वनाश पे उतारू है, और इसीलिए एक बूढ़ी माँ को जो कुर्सी दी गई उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। बूढ़ी माँ को तो कुर्सी मिल गई, पर इस मूर्ख बेटे को कुर्सी कभी नहीं मिलने वाली।
5: भाई, माँ सबकी माँ होती है, और केवल मोदी की माँ माँ नहीं है, और जब ये राहुल जी की माँ के या दूसरे नेताओं की माँ के अपमान करते हैं तब इनकी भावना आहत क्यों नहीं होती। मोदी जी जब अपमान करते हैं तब इनकी भावना क्यों आहत नहीं होती। माँ के बारे में बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके बाद महामानव ने ही शुरुआत की थी। इनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है।
6: एक आदमी मौकरी कर रहा है, राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, और अगर किसी महिला का वो अपमान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के कहने के मुताबिक, तो सामने जो ऑडियंस बैठी है उसमें हजारों की तादाद में लड़कियां बैठी हैं जो कहकहा लगा रही हैं और उसको अप्रिशिएट कर रही हैं। अगर किसी महिला की बेइज्जती की जाती, और वो भी बूढ़ी महिला की, तो वो कभी उसे अप्रिशिएट नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास विजडम की कमी है, मुझे माफी के साथ कहना पड़ता है। उन्हें मौकरी के अंदर और संजीदगी के अंदर कोई फर्क ही नजर नहीं आता है।
7: And this is not the first time something like this has made headlines. In August, Congress leader Sandeep Dixit hugged Rahul Gandhi and invoked Italian Prime Minister Giorgia Meloni's name in reference to Prime Minister Modi. Listen in.
8: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
9: एक चीज पूछ सकता हूं?
8: हाँ।
9: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
8: आई हैव नॉट रीच देयर येट।
7: And shifting focus, former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP mounting a sharp attack on both Ansari and the Congress. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging that his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam Body Chief Umair Ahmed Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to former Prime Minister Jawaharlal Nehru, saying that the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that such trends could create distinctions between citizens based on their faith.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: सजेस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
1: अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गुंज हमें सुनाई दे रही है और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गुंज बहुत मदद करेगी।

0: हम देश के स्वास्थ्य की बात करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी एक यात्रा पंजाब में भी चल रही है, नशा मुक्त को लेकर चल रही है और उसमें कई नेता पहुंच भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है नशा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पंजाब के अंदर, और ये यात्रा और पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है?
1: निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यह है कि बॉर्डर स्टेट है और ड्रग का वहां पर भरण पोषण पालन सरकारी व्यवस्था में हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिली जिसके कारण से वो बढ़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में इसको सीधे कन्फ्रंट करना, और जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा कि हमने नक्सलिज्म पर काबू किया है और हमको छुटकारा मिला है, अब हमें नशा मुक्त होना है, उसके तरफ भी हमें काम करना है। तो ये जो ड्रग्स का जिस तरीके का चल रहा है, नारकोटिक्स का जिस तरीके का चल रहा है, वो उसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे ही। और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वहां एडमिनिस्ट्रेशन लेस स्टेट हो गई है, वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और इसलिए वहां कुछ एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही दुभर है। लेकिन जनता को जागृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नितिन नवीन जी ने उसकी शुरुआत की है, हमारे अमित शाह जी गृहमंत्री जी वहां जाएंगे और इस यात्रा से हम लोगों को जोड़ेंगे और पंजाब को नशा मुक्त करना है, देश को नशा मुक्त करना है। इसके लिए
0: कितना बड़ा मैनेस हो चुका है सर पंजाब के अंदर, क्या इनपुट आपको मिला है इसको?
1: काफी बड़ा मैनेस हो चुका है, घर घर में इसकी तकलीफें पहुंची हैं और बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहुत ही ज्यादा भयावह इसकी स्थिति बनी है, और ये माफिया जो है ये काफी एक्टिव रहा है, और जिसको कहा जाए कि क्रॉस बॉर्डर्स जो बड़ी मात्रा में इसका आवागमन हुआ है, ये सब चीजें बहुत ही चिंताजनक है।

सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि सवाल पूछता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कहता है कि अमित शाह जी के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए, यह सवाल स्टूडेंट पूछता है। स्टूडेंट पूछता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर दिया। स्टूडेंट पूछता है कि जुडिशरी और बाकी संस्थाएं क्यों नहीं अपना काम करती हैं। स्टूडेंट पूछता है इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता। इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है। कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
1: अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करेगी।

0: Situation not looking good for Punjab, especially when drug is one of the biggest reasons that has affected its youth. Remember what happened recently with Gulzar Singh? Now, a drug suicide bid shocker is rocking Sangrur. Sangrur is very important, ladies and gentlemen. That's Bhagwant Mann's constituency. BJP Congress are pointing to another suicide bid on your screens. Jagga Singh consuming poison at a government office in the state, posted videos against drugs, then harassed. Jagga Singh is claiming threats, harassment by Aam Aadmi Party workers. That is the big issue here. He's alleging that he raised a very valid issue, which is affecting one and all, men and women, children and the elderly, with regard to the narcotic substances misuse. The activist suicide bid has sparked a political firestorm as well, especially because this happened in Sangrur. And this is the second incident that has happened after Gulzar Singh video. Gulzar Singh, remember, just to give you a background, had a similar point to make. He said when he raised the issue of drugs and corruption and other issues with the minister, Cheema, after that there was sudden harassment that he faced, including threats that led him to take the extreme step. Remember, for the Aam Aadmi Party government, there is a drug-free Punjab claim. But that's under scrutiny now. Mann government is not looking good with people taking the extreme step, alleging they are being forced to do so by Aam Aadmi Party workers who are harassing them. This visual on your screen, and as you can see, posted by Sachin Pilot of the Congress Party. It's the opposition parties that are stepping up ante. So there's opposition, Shiromani Akali Dal, Congress, and the BJP. All these three parties are alleging that the Aam Aadmi Party government came with a lot of promise in Punjab. But if people are taking this extreme step or forced to take the extreme step, like die by suicide, it is reflective of the fact of the harassment that's taking place. Piyush Mishra joining me for the latest on that. Piyush, go ahead. How do you think the opposition is stepping up ante? Why are they alleging that the AAP government is behind all this?
1: No doubt about it that opposition has upped the ante on this. And joining us right now is Ravneet Singh Bittu, who is also our senior BJP leader. Remember that BJP and other political parties have been raising this entire matter, and they are seeking answers from the Aam Aadmi Party over this. And there are multiple incidents that have come to the fore in the past, also from Sangrur and also from other parts of Punjab. We have seen such incidents coming to the fore. But the opposition parties, like Congress and BJP, are raising this entire matter. Uda.
0: So tell me, how do you think this is going to now go ahead as Punjab is set to face elections as well? But do you think the situation is turning dire when it comes to people literally taking this extreme step, and in Sangrur? Do you think Aam Aadmi Party is able to defend it in any way? What is their justification? Or do you think this is proving to be trouble now for Bhagwant Mann specifically?
1: Well, look, it's becoming a huge problem for Bhagwant Mann government. Remember that BJP is already carrying out a drug yatra across the state. Senior leaders of BJP, including Rekha Gupta, Arjuna Meghwal, and today Shivraj Singh Chauhan will also be there in the state. They are carrying out these yatras. Earlier, we had seen how BJP National President Nitin Naveen had also carried out this yatra, and he had basically flagged off this yatra. And this yatra is going to culminate with the rally of Home Minister Amit Shah. And BJP is going to raise this issue in coming few days, and they will certainly seek answers from the Aam Aadmi Party government. As of now, Bhagwant Mann has not responded on these allegations. Yes, they are saying that BJP is trying to defame the government over this, but multiple incidents have come to the fore, to which there's no doubt that government will have to respond.
0: Stay on with me, Piyush. Let's listen in to what this man is saying, and I'll help translate also to what this man is alleging in Sangrur.
2: ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ,
3: ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆ ਡੀਵੀਆਰ।
2: ਪਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਭਾਜੀ,
3: ਹੋਰ ਸਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
4: ਵੀਰੇ, ਆਇਓ ਮੜਾ ਚੁਕਾਏ ਹੋਏ ਯਾਰ।
0: This is heartbreaking. This is absolutely terrible. A citizen only posted about drugs, which is what should be the biggest concern of the state government. Piyush, go on, get us more reactions about how these heartbreaking stories are coming to light.
1: Pooja, right now we are joined with Ravneet Singh Bittu, jo senior, he's a senior leader, he's a senior leader from the state of Punjab. Bittu sahab, लगातार पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले गुलजार सिंह का केस सामने आया, अब जग्गा सिंह का सामने आ रहा है, और एक सबसे डराने वाली बात यह पिटू साहब कि एक गवर्नमेंट ऑफिस के सामने एक शख्स जहर खा लेता है और उसकी वीडियो सामने आ जाती है। जो घटनाएं लगातार पंजाब में हो रही है उसको आप किस तरह देखते हैं?
5: पीयूष, करे क्या कोई जब हर आदमी जो कोई कोशिश कर रहा है, ये जो आदमी है जग्गा सिंह है, जो ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, जो सीएम का खुद का डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं सब कुछ ये हो रहा है कि पिंड नमोल गांव है, और संगरूर डीसी के सामने वो गया था कि मुझे मेरे गांव का सरपंच जो आम आदमी का है, पंचायत है, मैं भी 2 साल पहले ये आदमी खुद नशे में लिप्त था, लेकिन ये इसने नशा छोड़ा, इस नशे को त्यागा और ये स्ट्रीमलाइन मेन स्ट्रीमलाइन में आ गया। तो अब इसे, क्योंकि इसने उसकी वीडियो डाल दी गांव की, इसे बोला गया भी इसे डिलीट कर, डिलीट करवाया गया, पुलिस ने नहीं सुना, एसएचओ से डीएसपी एसएसपी ने नहीं, वो डीसी कमरे के सामने वहां भी उसे धक्के मार के भगा दिया गया भी तेरे को अब हर जी है। वो अभी रूर नहीं बच पाया, लेकिन उसे अब पटियाला रेफर किया है। ये सीएम के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सीएम के डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है, ये बिल्कुल थर्ड अटेम्प्ट है विद इन अ वीक, ये 3 लोगों के ऊपर ये अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि एक जो सबसे पहले जो उस गांव में गया था, शेरों गांव में, जिस तरीके से उसको अनमोल जीत को पीटा गया था, ये डर है, वो दहशत है पुलिस, जिसकी वजह से ये तीसरा आदमी आज खा गया, जो नशा उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं भी ये नशा बेच रहा है, अब इसके ऊपर केस एफआईआर दर्ज कर रहे हैं भी ये ड्रग जो है सारे गांव में बेच रहा है, ये इनाम मिल रहा है कोई, अगर क्योंकि ये बीजेपी की यात्रा शुरू हो चुकी है और लोग आगे आके हिम्मत करके लोग का बताने लगे हैं भी किस गाँव में कौन नशा बेच रहा है। ये अभी तो 4 दिन यात्रा हुई है, तो जिस दिन यहाँ पूरी यात्रा अमित शाह जी आ जाएंगे, एक हर लोगों के आस जगी है भी यार कोई हमें बचाने वाला है, बीजेपी अब यात्रा कर रही है और बीजेपी लीडरशिप अमित शाह जी ने भरोसा जो दिया है, ये लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी एक नेक्सस है, जो आज गैंगस्टर जो ये नशा बेचते हैं और आम आदमी पार्टी का, ये नया एक कॉम्बो बना है, नया कॉम्बो काम कर रहा है, ये आम आदमी पार्टी नहीं रही, ये आम पार्टी गैंगस्टर की पार्टी बन चुकी।
1: सर आप तो कह रहे हैं कि ये गैंगस्टर की पार्टी बन रही है और आप कई बड़े आरोप जो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है वहां पर, जो मुख्यमंत्री है, जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इस तरह के मामले ज्यादा नहीं है पंजाब में। आप सीधा जवाब भगवंत मान को क्या देना चाहेंगे?
5: कुछ भाई, और मैं ये नेशनल इंटरनेशनल चैनल है, जो आदमी मैं कहना नहीं चाहता था, एक पंजाब की जिसने भगत सिंह की पगड़ी इस पार्लियामेंट में कभी बांधी थी, वो आदमी खुद नशे में रहता है, सुबह शाम वो टल्ली रहता है, पहले तो वो देसी पीता था, अब अंग्रेजी पीता है, स्कॉच में से रोज, जो खुद होश में नहीं आता, जो केजरीवाल का कंडक्टर बना हुआ है, वो मुख्यमंत्री कहाँ का है? यहाँ केजरीवाल, यहाँ एक समझो, यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई और बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो इनकम कहाँ से आएगी? केजरीवाल के रोज जहाज चलते हैं, बाकी पार्टियों कैंपेन करनी है, ये चिट्टा बेच के ही ये पैसा भेजा जा रहा है वहां पे, ये कोई बात नहीं है।
1: ये इस तरह की वीडियोस क्यों सामने आ रही है? क्या लोग क्या लोगों में काफी ज्यादा रोष हो गया है, लोग आपके अपनी बात उठा नहीं पा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफिस की ऑफिस के पास जा रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट कर्मचारी उनकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए जो जग्गा सिंह जैसे आदमी को जहर पीना पड़ रहा है।
0: News coming in from Hyderabad, a 10 rupees fare change for an auto rickshaw driver turned fatal. The Hyderabad auto driver has died after an alleged assault by the passengers. What happened? 10 rupees change had to be given and 42-year-old Mukaram apparently did not have it, refused it. Some confrontation escalated on that and then an assault started against him. Over 10 rupees change. The argument was over auto fare that escalated, but the assault allegedly was so brutal that Mukaram, 42-year-old auto rickshaw driver in Hyderabad, has succumbed to the injuries and the doctors have declared him dead. The incident happened in Falaknuma Police Limit in Hyderabad. Cops have identified at least two suspects for now. We are told that by the names of Azim and Shoaib in Hyderabad, who took this auto rickshaw. The cops are probing details of this assault and the death of the driver. Remember, for an auto rickshaw driver, very likely he would have been the only earning member of the family for the livelihood. Over 10 rupees fare, whether it was an escalated fare that he was demanding or refusing change, the details that are going to be investigated by the police. But listen in to these eyewitnesses. They are telling about what exactly happened and the family member also.
6: मार कर कत्ल किया गया है, जो मारने वाले का नाम अजीम है और उसके साथ में शोएब और जितने 6-8 लोग हैं, जो 10 रुपए के चिल्लर के लिए जो गाली गलौज की गई और वो बच्चा 200 रुपए की नोट देने की वजह से चिल्लर नहीं है कहकर कहा गया तो उसको गाली दिया गया और फिर उसको पलटा कर उनकी शरीक हयात के सामने और उनकी बच्ची के सामने मार मार कर बच्चे का कत्ल किया गया।
7: क्या करे, आके वहाँ के बच्चे को फोन करके बोले मुकरम को बुलाओ, मुकरम चले गए थे, नए सर्कल पार कर लिए थे, बाबा मुकरम तुम इधर आओ, इन लोग आए बात करने के वास्ते, तुम बोलते हो बच्चों को लेकर पलट के आए नर्स के, आने के बाद बातचीत कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मारना शुरू करे बच्चे को, पंचा मारे, नीचे गिर गया मुकरम, नीचे गिरने का सीने पे खुल लिया उसको, इधर हाथों पे पूरा डैमेज कर दिया, बच्चा पीट सा था मेरे भाई को, मेरे भाई को पीट सा थे, पीट साने के बाद गिर गया, गिरे के बाद भी खुल लिया, वो लोग 8-10 जने मिलकर मारे, अब मेरे को मालूम हुआ अब मेरे भाई की लड़ाई हो रही, लेकिन मैं बोला बच्चे बच्चे लड़ लेते, इन लोगों ने इसके नहीं मिल लेते, बोल के मैं नहीं गया सब, मेरे को नहीं मालूम, इतना बुरा मार रहे इसको नीचे डाल के।
0: Truly heartbreaking are people right now with short temper, ready to indulge in these violent actions. My colleague Abdul Bashir is tracking all the latest on that. Abdul, good morning. What exactly happened in this case? How are the police going to ensure justice delivered to the family?
8: Well, a shocking, brutal murder has taken place in Wattapally, where Mohammed Mukram, a 48-year-old auto driver, was called by known persons. Allegedly, a dispute broke out regarding a 10 rupee change that later turned out to be fatal, where the known persons have called Mukram back again. After he left the premises, they called him over the phone, asking to come to a location where he arrived with his daughter and wife, where along with him in the same auto. When he reached there, a dispute broke out and the assailant directly attacked him and hit him severely, making him severely injured, and in front of his daughter and wife. And immediately he was shifted to hospital where the doctors had declared him dead. So this is a shocking case that has come up where the police has right now registered a case and are investigating the matter, where the accused are identified as Shoaib and the other person, where now...

0: to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि सवाल पूछता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कहता है कि अमित शाह जी के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए, यह सवाल स्टूडेंट पूछता है। स्टूडेंट पूछता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर दिया। स्टूडेंट पूछता है कि जुडिशरी और बाकी संस्थाएं क्यों नहीं अपना काम करती हैं। स्टूडेंट पूछता है इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता, इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अनभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: अरे इतने सुंदर इमारतें, मुझे लगता है इनको बनाने में तो 200 साल लगे होंगे, फरिश्तों ने बनाया होगा। और वहीं पर नेहरू जी रुक जाते हैं, कहते देखिए वो कितना बड़ा कला का पारखी था। जबकि उनके साथ आए हुए जो इतिहासकार थे, जिसमें उतबी हैं, फरिश्ता हैं, मिनहाजुस सिराज हैं, वो लिखते हैं कि ये कहने के बाद गजनी ने कहा सारे मंदिरों को तोड़ दो, आग लगा दो, नेफ्था लगा के आग लगा दो। मगर देखिए कैसे वो छुपाते हैं, ये उनके दिल की हकीकत है। और अब मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे श्री एनवी गाडगिल के लिए, उनके इन्हीं कारणों की वजह से वो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय हिंसा बढ़ी। द स्पीचेस ऑफ नेहरू ऑन द मुस्लिम प्रॉब्लम इंसाइटेड देम एंड इन्फ्यूरिएटेड द हिंदूज। द डिफरेंस बिटवीन नेहरू एंड पटेल एंड हाउ टू डील विद मुस्लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो। द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ द नेहरूज स्पीच इज गेटिंग टेंसर एंड टेंसर एंड इट इज क्रिएटिंग रिस्क टू गांधी जीज लाइफ। एनवी गाडगिल हु वाज द मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट इन हिज बुक फ्रॉम इनसाइड द गवर्नमेंट इन द ओरिजिनल एडिशन ऑन पेज नंबर 147 to 148। इसीलिए हामिद अंसारी जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े नहीं हैं, उन मुर्दों में जान फूंक दी है। जो लोग भूल गए थे उनको भी वो सारी की सारी चीजें उन्होंने याद दिला दी हैं। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आज अंसारी साहब ने अपने बयान से साबित कर दिया है कि कांग्रेस जिस प्रकार के मुस्लिम्स को आगे बढ़ाती है उनके अंदर वही लीगी भावना होती है जो कांग्रेस के अंदर आज पूरी तरीके से व्याप्त हो गई है। और इसलिए हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि नेहरू जी ही, एक और बात कोट कर दूं, 1935 में ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट द हिंदू नेशनलिज्म एज डिस्क्राइब्ड बाय स्वामी विवेकानंद। यानी 1934 में ये लिख रहे हैं, और जैसे 1937 में जिन्ना कहता वंदे मातरम का विरोध करो, खड़ाक से सरेंडर, 6 अप्रैल 1938 को वो लेटर लिखते हैं, नहीं नहीं हम सब बंद छोड़ने को तैयार हैं, सब काटने फाटने को तैयार हैं, 1944 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख देते हैं। यानी जो गलती कांग्रेस ने 100 साल पहले की थी वही आज कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हामिद अंसारी साहब ने कांग्रेस को एक्सपोज किया, नेहरू जी को एक्सपोज किया और यह साबित किया कि वामपंथ एक खतरा है, उसके लिए उससे अब एकदम साफ हो गया कि कांग्रेस के चेहरे का मास्क हट गया है और वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस वालों को नेहरू जी को कोट करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि उनकी किताबों में जो कुछ लिखा है शायद उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा है। और राहुल गांधी जो ऐसे नेता हैं, आपने पढ़ा लिखा दो शब्द सुने होंगे ना, वो सिर्फ लिखे हैं पढ़े नहीं है, खड़ाकट ट्विटर पे लिखते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा नेहरू जी और गांधी ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़िए और याद रखिए, बैठे हैं वो दिल में इतने राज छुपाए, यानी जो उनका साहित्य है वो बैठा है दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा एक पन्ना उठे तो तुम्हारा दिल डगमगाए। धन्यवाद।
1: Anshu Trivedi of the BJP making that announcement and going clearly after Hamid Ansari with this. So basically what
0: I think I would said, like to remind you that in Kerala the Grand Mufti has said that the women should not come out of house. Unhe bahar aana hi nahi chahiye. Balki unhone kaha hai ki mahilaon ko aise rakhna chahiye जैसे नेकलेस या हार को तिजोरी में बंद करके रखते हैं वैसे रखना चाहिए। यह केरला के ग्रैंड मुफ्ती ने बोला है, इसलिए मैं कह रहा हूं विदेश में क्या बोला गया वो तो छोड़िए। अब मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से यह कहना चाहूंगा, ए भाई स्मैश पैट्रियार्की के झंडा बरदार अब ग्रैंड मुफ्ती के हो गए फर्मा बरदार। और मैं उनसे कहता हूं अगर हैसियत है, वहां आपकी सरकार है केरल में, हैसियत है क्यों बोल के दिखाओ जो हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर चिंगाड़ते और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
1: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। पूरे देश में ये छात्रों की गुंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गुंज बहुत मदद करेगी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: हम देश के स्वास्थ्य की बात करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी एक यात्रा पंजाब में भी चल रही है, नशा मुक्त को लेकर चल रही है और उसमें कई नेता पहुंच भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है नशा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पंजाब के अंदर, और ये यात्रा और पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है?
4: निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यह है कि बॉर्डर स्टेट है और ड्रग का वहां पर भरण पोषण पालन सरकारी व्यवस्था में हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिली जिसके कारण से वो बढ़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में इसको सीधे कन्फ्रंट करना, और जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने नक्सलिज्म पर काबू किया है और हमको छुटकारा मिला है, अब हमें नशा मुक्त होना है, उसके तरफ भी हमें काम करना है। तो ये जो ड्रग्स का जिस तरीके का चल रहा है, नारकोटिक्स का जिस तरीके का चल रहा है, वो उसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे ही। और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वहां एडमिनिस्ट्रेशन लेस स्टेट हो गई है, वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और इसलिए वहां कुछ एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही दुभर है। लेकिन जनता को जागृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नितिन नवीन जी ने उसकी शुरुआत की है, हमारे अमित शाह जी गृहमंत्री जी वहां जाएंगे और इस यात्रा से हम लोगों को जोड़ेंगे और पंजाब को नशा मुक्त करना है, देश को नशा मुक्त करना है। इसके लिए
3: कितना बड़ा मैनेस हो चुका है सर पंजाब के अंदर, क्या इनपुट आपको मिला है इसको?
4: काफी बड़ा मैनेस हो चुका है, घर घर में इसकी तकलीफें पहुंची हैं और बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहुत ही ज्यादा भयावह इसकी स्थिति बनी है, और ये माफिया जो है ये काफी एक्टिव रहा है और जिसको कहा जाए कि क्रॉस बॉर्डर जो बड़ी मात्रा में इसका आवागमन हुआ है, ये सब चीजें बहुत ही चिंताजनक हैं।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि सवाल पूछता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कहता है कि अमित शाह जी के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए, यह सवाल स्टूडेंट पूछता है। स्टूडेंट पूछता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर दिया। स्टूडेंट पूछता है कि जुडिशरी और बाकी संस्थाएं क्यों नहीं अपना काम करती हैं। स्टूडेंट पूछता है इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता, इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU!
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: फाइव डिस्टिंक्ट फेसेस, वन कॉमन पर्पस, इंडिया इन्फॉर्म्ड एंड अहेड, वेयर द साउथ फाइंड्स अ वॉइस, सुपर सिक्स, शार्प क्वेश्चंस, जीरो डिस्ट्रैक्शंस।
3: यू ऑल्सो स्पीक ऑफ पुअर चिल्ड्रन, Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
2: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
4: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking up. Pakistan army is unable to control the situation.
2: India first, where decades of experience speaks.
5: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
2: News Today, exclusives that shape the headlines.
6: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
2: News Track, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
1: अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गुंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गुंज बहुत मदद करेगी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: आपने इस देश के सर्वोच्च पद पर आप बैठे रहे, कम से कम आप तो इस बात का स्मरण करते कि आपकी इस टिप्पणी से किसी एक बड़े समाज को ठेस पहुंचेगी। अगर इस देश को किसी से खतरा है तो आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथियों से खतरा है, और वे कौन है सारा विश्व जानता है। उस पर कब बोलेंगे हामिद अंसारी जी?
1: हामिद अंसारी साहब के ताल्लुक से मैं इतना कहूंगा कि वो एक बहुत बड़े परिवार से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। और जनाब हामिद अंसारी साहब तो इंडियन फॉरेन सर्विस में बड़ी खिदमत की देश की, और तीसरी यह है कि एक स्कॉलर है। आप उनकी बात से डिसएग्री करिए, मगर उनकी स्कॉलरशिप के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन इस तरह उठाएगा कि वो देश से मोहब्बत नहीं करते, तो मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ।

0: भारत सरकार ने 16 अक्टूबर से यूपीआई के 2000 से अधिक के ट्रांजेक्शन पे जो शुल्क लगा रही है, जिसको हम एमडीआर शुल्क कहते हैं, पंपों पे ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। हमारा अनुमान है औसत एक पंप पे 17,700 रुपये का खर्चा पड़ेगा। अब हम लोगों का मार्जिन इतना छोटा होता है कि हम ये खर्चा वहन नहीं कर पाएंगे।
1: It remains to be seen how the state government and the finance ministry addresses these concerns. Meanwhile, it's time for a short commercial. On the other side is our entertainment special in the club. Stay tuned.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक,
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग. देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: इज इंडिया रेडी फॉर अ चाइना रीसेट? After Galwan, Modi and Xi seek cautious engagement. Border disputes and trade frictions still threaten progress. India Today uncovers how fragile diplomacy could shape Asia's future and what this means for India's security and economy. Read the full story in the latest issue of India Today, Making Sense of India. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe at subscriptions.intoday.in.

0: On the cinema front, Ajith was last seen in the blockbuster Good, Bad, Ugly. And will next reunite with filmmaker Atik Ravichandran for Daredevil. Entertainment Bureau, India Today.
1: There is finally some clarity on the long-awaited Andaz Apna Apna sequel rumors. Filmmaker Rajkumar Santoshi has confirmed that he is not making a direct sequel to the 1994 cult comedy starring Aamir Khan and Salman Khan. Instead, he is working on a new film titled Aadha Apni Apni, which will belong to the same comedy adventure space but feature a completely different story and characters. Here's what we know.
2: Amar aur Prem, Pavitra aur Bhakti Ras se bharpoor.
3: Haila. Ui ma. Haila. Juhi chawla.
4: Fans of Andaz Apna Apna will have to wait a little longer for a new dose of that madness. But not for a sequel.
5: Are ye kya? Do chai kyun? Main bhi to piyunga.
6: Are yaar, do dost ek pyaale mein chai piyenge. Isse dosti badhti hai kya?
4: Filmmaker Rajkumar Santoshi has clarified that he is not making a direct sequel to his 1994 comedy classic. Instead, he has announced a new film titled Aadha Apni Apni, which will have a similar comedy adventure flavor but an entirely new story and new characters.
7: हमने आपस में नाम बदल लिए थे. मैं चाहती थी कि कोई लड़का मेरी दौलत से नहीं मुझसे प्यार करे और वो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया है प्रेम
8: सच सच
4: For context, Andaz Apna Apna brought together Aamir Khan and Salman Khan as Amar and Prem. Two young men chasing their dreams of getting rich and finding love. Raveena Tandon, Karishma Kapoor and Paresh Rawal were also part of the cast, with Rawal playing a memorable double role.
9: Uncle, humne apni jaan pe khel kar aapko bachaya.
10: Chalo, chalo, chalo.
9: Chali,
10: chalo, bhatija, chalo.
9: Chal, Prem. अंकल पीछे जा अंकल हाँ
10: बीच में ही ना बीच में
9: हाँ बीच में
10: पीछे ही पीछे पीछे
9: हाँ लेकिन फिर मैं चलाऊंगा
10: अरे
9: पीछे बैठ बैठा क्या
10: अच्छा आगे डंडी पे डंडी
9: अच्छा हाँ डंडी पे ट्राई करिए अंकल डंडी पे ट्राई करिए लेकिन फिर मैं चलाऊंगा कैसे
10: हाँ ये भी
9: बैठिए ना अंकल उसी गोद में बैठी गोद
10: अंकल गोदी वाले
11: चल चल नीचे उतर गोद में बैठ नीचे उतर गोदी वाले
10: अबे इडियट है पता भी नहीं चले वो पीछे बैठे
4: शक्ति कपूर्स क्राइम मास्टर गोगो बिकेम अनदर आइकॉनिक कैरेक्टर फ्रॉम द फिल्म
12: क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा तेजा को भी नहीं छोड़ूंगा
13: ये तेजा नहीं मेरे डैडी हैं तेजा तो पापा बन गया
12: ये क्या ड्रामा है ले चलो इन तीनों को
4: द फिल्म डिड नॉट मेक अ मेजर इंपैक्ट एट द बॉक्स ऑफिस व्हेन इट रिलीज्ड इन 1994 बट इट्स ह्यूमर कैरेक्टर्स सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स ग्रेजुअली टर्नड इट इनटू अ कल्ट फेवरेट
14: तेरी होने वाली भाभी भाभी होगी तेरी और शादी होगी मेरी हाँ
15: अमर हमारी दोस्ती
14: अमर दोस्ती कहीं भाड़ में
15: हारा मतलब मैं जीता रवीना मैं आया
16: आप कुछ कह रहे थे
15: दिल की बात नहीं दिल की बात
14: ये रॉन्ग नंबर क्यों लग रहा है
4: More than three decades later, the film continues to remain part of a popular culture, with dialogues and characters frequently referenced by audiences. Its influence also traveled beyond Hindi cinema, with elements of the story later adapted into films including the Tamil film Ullathe Alitha.
17: ரெண்டு மூணு நாளா ஸ்டமக் அப்செட்.
18: ஐயோ.
17: பேரர்
18: சார்.
17: டாய்லெட் எங்க இருக்கு?
18: என்னடி இருக்கு சார்?
17: பேக்லயா?
4: தெலுங்கு film வி தேவதாண்டி பாபு.
19: சார், நீ அம்மாக்கு வீட அத்தனை சூட் அவுட்.
20: நான் பண்றாய். சரிங்க சூட் அப்பமா.
21: నాకు నచ్చలేదు.
22: అంటే 10% కూడా నచ్చలేదా?
21: 1% కూడా నచ్చలేదు.
4: అంటే అన్ కన్నడ ఫిల్మ్ గల్లటే అలియందరు.
21: అప్పటికి కేలిదే కొర్తనే ఇల్లిలా. అవరికి 500 కేలిదే 5000 కొట్టు షాపింగ్ హోగ అంటే.
4: వెల్ రాజ్ కుమార్ సంతోషి హస్ నౌ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ హి డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ మేకింగ్ డైరెక్ట్ సీక్వెల్స్. His new project, Ada Apni Apni, will be another comedy adventure, with Santoshi promising a similar style of humor and music, but stressing that the story and the journey of its characters will be completely different from Andaaz Apna Apna.
0: Shut up! Raveena, kaun? Karishma, kaun? Us musibat se nikle nahi? Kya bhai nahi musibat? Uncle, kaun?
4: The cast, however, remains under wraps. So no Amar and Prem 2.0 for now. But Rajkumar Santoshi is returning to the comedy adventure genre that gave audiences Andaaz Apna Apna. Entertainment Bureau, India Today.
1: From Sameer Raina and Medha Shankar's wedding rumors to Vidya Balan's new avatar in Jailer 2, the entertainment world has plenty of buzz today. Up next is our segment, What's Trending?

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
1: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करेगी।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: आपने इस देश के सर्वोच्च पद पर आप बैठे रहे, कम से कम आप तो इस बात का स्मरण करते कि आपकी इस टिप्पणी से किसी एक बड़े समाज को ठेस पहुंचेगी। अगर इस देश को किसी से खतरा है तो आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथियों से खतरा है, और वे कौन है सारा विश्व जानता है। उस पर कब बोलेंगे हामिद अंसारी जी?
1: हामिद अंसारी साहब के ताल्लुक से मैं इतना कहूंगा कि वो एक बहुत बड़े परिवार से उनका ताल्लुक है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। और जनाब हामिद अंसारी साहब तो इंडियन फॉरेन सर्विस में बड़ी खिदमत की देश की, और तीसरी है कि एक स्कॉलर है। आप उनकी बात से डिसएग्री करिए, मगर उनकी स्कॉलरशिप के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन इस तरह उठाएगा कि वो देश से मोहब्बत नहीं करते, तो मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ।

0: का केस है ये आप मान रही हैं?
1: नहीं लगता, छोटा बच्चा है, उसको सुसाइड सुसाइड बहुत दूर की बात है। वो टैलेंटेड बंदा था, लगता नहीं वो बच्चा सुसाइड करता होगा। बचपन से उनके पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन है ये। उनके सामने एक बड़ा ध्येय था, अब्दुल कलाम जी सर जैसा आदर्श सामने रखने वाला वो बच्चा था, वो कैसा सुसाइड कर सकता है?
0: श्यामलता जी, मुझे बताइए कि कई सारी थ्योरीज चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, उसके बाद कुछ थ्रेट हुआ डॉक्टर उनके जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनकी तरफ से, इस वजह से उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया। क्या फैमिली को लगता है ऐसा कुछ हुआ था?
1: मैडम, जब आईआईटी का शब्द आता है तो बच्चों को दो दो साल मेहनत करके वहां पे नंबर लगता है। अगर आईआईटी में जाने के लिए इतना पढ़ाई करना पड़ता है, वो बच्चा तब वहां जाता है, तो आप बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। हमको तो समझ में नहीं आता, आजकल कौन सी भी परीक्षा रहे तो पहले चेक किया जाता है, बाद में बच्चों को अंदर भेजा जाता है, तो इस पर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है।
0: तो आपके हिसाब से क्या हुआ आईटी कैंपस में? क्योंकि हमें आईटी की तरफ से जो स्टेटमेंट मिला है वो ये है कि वो एग्जाम के बीच में अपना एग्जाम पेपर ऑनलाइन चैट जीपीटी पर अपलोड कर रहे थे, चीटिंग करते हुए पकड़े गए, इसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया। अगर आप लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ एंड फैमिली का ये सोचना बिल्कुल जायज है, अगर आपके हिसाब से ऐसा नहीं हुआ तो हुआ क्या?
1: वहां मुंबई में कॉलेज में क्या हुआ मैडम, ये तो हमें पता नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वहां की चौकशी सीबीआई की तरफ से हो जाए, वही फाइल को न्याय दे सकते हैं। हम तो गांव के लोग हैं, अज्ञानी है, हमको क्या समझता। हमारा साहिल गया, बस हमारे साहिल के लिए न्याय होना। और वो कॉलेज में जिन्होंने हमारे साहिल के ऊपर ये वक्त आया, उन्होंने जिन्होंने अन्याय किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा होने को होना। और वो कॉलेज में और कोई साहिल नहीं होने को होना, और कोई साहिल सुसाइड करने को नहीं होना। वो कॉलेज के सभी बच्चे हमारे बच्चे समान हैं, वो बच्चे वहां पे सुरक्षित रहे, ऐसा लगता है। हमारे साहिल को तभी न्याय मिलेगा जब उनको वहां पे जो अन्याय हुआ उनको सीबीआई की तरफ से न्याय मिलेगा। हम
0: जी
1: सीबीआई पर भरोसा करते
0: जी श्यामलता जी, आप समझती हैं एस सी एस टी एक्ट क्या होता है? क्या आप समझती हैं वो कब लगाया जाता है?
1: मैडम। मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी पर अन्याय करते हैं कि तुम ये काम करते हो, तुम ये जात के हो, वो जात के हो, ऐसा कम लेखते हैं, तब ये हो सकता होता है।
0: तो आपके हिसाब से ये ट्रीटमेंट हुआ साहिल के साथ कॉलेज के अंदर, उनको उनको
1: इसके
0: डिस्क्रिमिनेशन करा गया उनके अगेंस्ट आपके हिसाब से?
1: इसी लगता है कि अभी तक साहिल जैसे चार पांच छह ऐसे बच्चे ने सुसाइड किया, क्यों यही जात वाले बच्चे पर सुसाइड का वक्त आता आता टैलेंटेड रहने के बाद भी अगर ये बच्चे सुसाइड पर आता है तो करके हमारा उन पर ऐसा लगता है।
0: तो आप कह रही हैं आपको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भेदभाव हुआ था क्योंकि वो एक दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है?
1: हाँ, क्योंकि 8 दिन के पहले उनके मम्मी पापा जब मिलने के लिए गए थे तो उनके मम्मी पापा को साहिल ने बताया था कि यहाँ कॉलेज में मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता है, मुझ पर अन्याय हो रहा है। तो साहिल के मम्मी पापा ने बोला, आपको ये पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, बाकी चीजों पर ध्यान

0: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई है और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकता है। तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था, जमुई थाना कांड संख्या 428 सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई है। साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेक डाउन नोटिस जारी किया। 23 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 14-15 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 74 सेक्शन के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे।
1: So you heard the top cop over there. Let me also cut across to my colleague Shashi Bhushan joining us for more details on the story. Shashi ji, ye kaun log hain? Kaun itne confidence ke saath bachcho ko shaam ke 6:30 baje question karta hai, video banate hain, molest karke utha kar lekar ja rahe hain? At one point I was really scared for the girl because I have seen the, you know, the entire video. Kaun hain ye log?
2: देखिए, सबसे बड़ा पहला सवाल अगर प्रशासन से हो रहा है तो सवाल वही ये भी है कि आखिर जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे उनकी मानसिकता कैसी है। आप समझिए, पुलिस ने जो जानकारी दी है, जिन तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो तीनों कोई वयस्क नहीं है, वो माइनर्स हैं, नाबालिग हैं, और एक की उम्र 17 साल है, दूसरे की उम्र 18 साल है और तीसरे की उम्र भी इसके आसपास है। थोड़ी देर पहले तक जब हमें जानकारी नहीं थी तो उनके नाम की जानकारी हम तक पहुंची थी, लेकिन अब तो हम उनका नाम भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो नाबालिग हैं। पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। एक दो वीडियो फुटेजेस हैं उनके आधार पे, दोनों वीडियो वायरल हुए जमुई में। घटना 19 सितंबर की शाम, जैसा आप खुद भी बता रही थी, जो बिहार पुलिस ने जानकारी दी है, शाम तकरीबन 6:25 से 6:30 बजे के आसपास है। और ये जो पूरा इलाका है ना, मतलब जमुई से लखीसराय को कनेक्ट करने वाली जो सड़क है उससे तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर की तरफ जो मड़वा पहाड़ है वो एक, मतलब टूरिस्ट जोन कहिए या वहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए, पहाड़ का इलाका है। तो वहीं पर ये दोनों लड़के और लड़कियां गए हुए थे जो नाबालिग भी हैं, स्कूटी से। शनिवार का दिन था तो कोचिंग खत्म हुआ था, वीकेंड का समय था। इनको नहीं मालूम था कि अगर थोड़ी सी देर हो जाएगी और रोशनी कम होगी तो इस तरह की घटना उनके साथ हो जाएगी। लेकिन हाँ, जैसा मैं कह रहा था कि ये मानसिकता अपने आप में बहुत हैरत में डालती है कि नाबालिग बच्चे, जिनकी तीन बच्चों की गिरफ्तारी हुई, वही अपने ही हम उम्र के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे रहे थे। हालांकि एक शख्स जो थोड़ा वयस्क नजर आ रहा है, जो एक ऑरेंज कलर के गमछे में, स्कार्फ में है, उसकी आइडेंटिटी को लेकर के अभी भी पुलिस के लिए चुनौती है। तो वो एक शख्स ऐसा दिखता है जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ, पुलिस ने कुल 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। तीन की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। जो BNS की अलग अलग धाराएं हैं BNSS की, उसमें केस रजिस्टर्ड किया गया है और पॉक्सो का जो सेक्शन 8 है उसके तहत भी FIR दर्ज की गई है। तो ये समझ लीजिए कि जो भी आरोपी हैं उनको आगे बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। जिस तरह से छात्रा के साथ घटना को अंजाम दिया गया, और अब बहुत बहुत विचलित करने वाला पूरा वीडियो है जिसमें उस युवक से जो छात्रा के साथ है उससे ज्यादा,
1: शशि जी, ये जो गमछे वाले हैं जिन्होंने एक सैफरन कलर का गमछा लगाया हुआ है, वही हैं जिन्होंने उस लड़की को उठा के एकदम फेंकने की कोशिश करी थी, वही हैं, उन्हीं का आइडेंटिटी नहीं मिल रही और वही गायब हैं। सो वी मस्ट फाइंड आउट हु दिस मैन इज एंड वी रियली होप बिहार पुलिस विल डू द जॉब। बट लेट मी टेक दिस क्वेश्चन टू द MLA ऑफ जमुई एरिया। जॉइनिंग मी नेक्स्ट इज श्रेयसी सिंह, शी इज द एरिया MLA, यंग वुमन हरसेल्फ। सो श्रेयसी, माय फर्स्ट क्वेश्चन to you, you're an athlete yourself, you know what it takes for a woman to go out to really make a wave, especially in places like UP and Bihar. What has been your first reaction to the story? Are you absolutely aghast?
3: Naturally, Sonal, this is something that disturbs all of us, and especially when it happens this close to home, a place that you're so proud of and you've always represented Jammu at national and international levels. It greatly disturbs me. But unfortunately, the harsh reality of the society today is that these antisocial elements or these criminal mindset people are also living amongst us. And I am truly sorry for the incident that happened. But I'm also very proud about the fact that the Jilla Prasasan took cognizance and they you know, actively responded to what needed to be done. And so far in the afternoon today itself, they have made three arrests they've put them under the POSCO Act, and I'm sure that by the evening we will be able to make more advancements in terms of what in terms of the kind of you know the other people who are involved in this act. They will also be taken up to task.
1: Right, but ma'am, we are now getting reports that the accused in this case, the molesters in this case, the criminals in this case were also minors. Do we have any idea if they come from a particular section, if they are of a particular gang or they represent a particular organization? Do we have any such details?
3: I don't want to put these people under any sort of category. Antisocial elements are exactly what they are, unfortunately, and they live in this society. So just, I don't know where they get this power to think that they are moral. And moral policing can be one, on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion. But the way that they mishandled, mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable, and I don't want really.
1: I'm sorry, Ms. Singh. Are you saying moral policing can be done in a respectable, decent manner? What do you mean by that?
3: Well, I say that you can have an opinion about how somebody chooses to live their life and what they want to do with it. And maybe there is a better way to do it. But the way that they've treated is absolutely not tolerable, right? Because the way the videos that have come are shocking. How can you treat a boy and girl of the society that you are living in? They must have known that this boy and girl are kids from Jammu. I can't fathom the fact that they were treated this badly by the people of their own community, the people of the community who are they're apparently living with.
1: Ma'am, I'm sorry, but I think moral policing of any kind is problematic. I think it is nobody's business to tell women what to wear, where to go, what time to go, who to go out with. I think that's really disturbing. And what's got me even more disturbed is the fact that, you know, this all happened in an area where you are a woman MLA of that area.
3: I think Jammu is what is going to help curb this. I am going to ensure from my side that absolutely at no level there is a hole in the loop for them to get out, because this incident needs to set a precedent for the future, and not just for Jammu or Bihar, but it has to be shown in all over India, where people like the sorts that were shown in the video can think that they can get away with it. India is not going to have it, and more so the women of India are not going to have it.
1: Ma'am, my worry is that every time an incident like this happens, you know, the real takeaway is that another girl will ensure that she does not leave for the classroom. Another family will say, mat jao, sham ke samay. Instances like these just discourage more and more women to keep inside, and that's really disturbing. We really, really hope that this will not discourage those women, and the strictest of punishment will be given to these absolute criminals. With that, it's a wrap on 5 Live. Thank you so much for tuning in. If you have any other suggestions on what stories we should be really picking up, please let us know. And we'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
1: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गुंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गुंज बहुत मदद करेगी।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान के बाद राजनीतिक बवंडर मच गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इमाम इमाम उमेर अहमद इलियासी। इमाम साहब, आपने भी वो बयान जरूर देखा होगा जिसमें हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि राइट विंग कम्युनलिज्म देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, आप इसको किस तरह से देखते
1: हैं? देखिए, उनका कोई ये नया बयान नहीं है, उन्होंने पहले भी इस तरह के कंट्रोवर्सी बयान पहले भी दिए और उसके बाद अब इन्होंने फिर दोबारा से इस तरह का एक कंट्रोवर्सी बयान फिर दिया है। पहली बात तो यह है कि हम उनके इस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज उन्हें मुसलमान याद आ गया, जब वो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे तब वो सेकुलर थे, आज उन्हें मुसलमान याद आ गया। जिस तरह से उन्होंने ये जो बयान दिया है, अब मुसलमान उनकी या किसी की भी सियासत में बातों में आने वाला नहीं है। ये बयान भड़काने वाला बयान है, ये बयान गुमराह करने जैसा बयान है। आज जब उनके पास कोई मुसलमान मिलने तक नहीं जा रहा, तब उन्होंने ये सोचा कि फिर मुसलमानों पे सियासत की जाए। मुसलमान समझदार है, मुसलमान इन सब बातों को समझता है।

0: हामिद अंसारी साहब ने एक किताब को कोट किया है जो 2019 में लिखी गई है, और बकौल उनके नेहरू जी ये कह रहे हैं कि उनके लिए कम्युनिज्म उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू राष्ट्रवाद। इस बात के लिए मैं हामिद अंसारी जी को बधाई देना चाहूंगा। कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। कम्युनिज्म यानी वामपंथ एक खतरा था, नेहरू ये मानते थे और नेहरू का संदर्भ वो लेके आए, और इससे यह भी साफ हो गया है कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बातों में जो कुछ दिखाई पड़ता है, इसकी कहानी खानदानी है, ये कोई अकेले अभी की बात नहीं है।
1: सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि सवाल पूछता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कहता है कि अमित शाह जी के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए, यह सवाल स्टूडेंट पूछता है। स्टूडेंट पूछता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर दिया। स्टूडेंट पूछता है कि जुडिशरी और बाकी संस्थाएं क्यों नहीं अपना काम करती हैं। स्टूडेंट पूछता है इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता। इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अनभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।

0: with it. So today, he suddenly thinks that SIR is a case of, you know, electoral outreach. I mean, how can you be so hypocritical simply because you dislike Monica?
1: Sanju Verma, your 2 minutes time is over. They're going to come circle back. You'll get an extra chance because you have the Congress and the Samajwadi Party, and it seems they will. They haven't really allied yet in UP, but possibly will be speaking on the same lines. You speak of the SIR being a democratic constitutional process, something that's been echoed by the courts. You're completely right, Sanju Verma, but that's shifting goalposts. Once again, justice delayed is justice denied. And if 38 lakh appeals are pending in the state of West Bengal, why should those people wait for at least, if not 13, then at least if the today the extra tribunals from 19 are raised to 42, to 42 tribunals, they still have to wait for at least 6 to 7 years. They've lost one cycle of vote. Why should they lose another cycle of vote? And there is data to suggest of all the applications the EC has heard till now, which is not more than a lakh and a half, 91.6% of them have passed the purity test. So by that virtue, justice delayed is justice denied, ma'am. And that is not about the democratic or the constitutional viability of SIR. That is a completely different question, which the EC needs to answer. I want to bring in Hari Shankar Gupta from the Congress and Ghanshyam Tiwari, National Spokesperson, Samajwadi Party. Mr. Gupta, to bring you in on what's happening in Delhi, there has been an attempt by opposition parties to paint the SIR process of being anti-one community, anti-one political party, where the EC is trying to engineer the demography in such a manner which only helps one particular party. But what's happening in Delhi, Mr. Gupta, the process, yes, is faulty and one needs to question how long it's taking. But the intent behind it, should that be questioned? Because everyone's getting notices. The Delhi CM has a notice against her.
2: Priti, please allow me to speak in Hindi also.
1: Sure, sir. 2 minutes.
2: देखिए मैं अभी जो जनरल बात हो रही है दिल्ली में कितना वोट है कितना वोट डिलीट हुआ है कितना वोट बचा है इससे मैं अलग हटके कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा जो बड़े फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए और जिनको संज्ञान में रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास में लास्ट एसआईआर 2002 में हुआ था। 2002 का डाटा मेरे पास में है, जिसमें एसआईआर होने के बाद में रजिस्टर्ड वोटर जो दिल्ली में थे वो 1.2 करोड़ थे और दिल्ली की पॉपुलेशन थी उस समय 1.38 करोड़। आप मेरी बात को समझे ना, दिल्ली में रजिस्टर्ड वोटर 2002 लास्ट एसआईआर जब हुआ था तो 1.2 करोड़ वोटर बने थे, पॉपुलेशन थी 1.38 करोड़, और आज के दिन 97 लाख वोट इलेक्शन कमीशन ने निकाले हैं जबकि पॉपुलेशन है 2.30 करोड़। ये क्या बता रहे हैं ये चीजें, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्या दिल्ली के अंदर 1.2 करोड़ जो 2002 में वोटर था उससे भी कम वोटर हो गए और पॉपुलेशन डबल हो गई है? 1.5 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई और वोटर कम हो गया? दूसरी बात यह है कि पिछले कई दिनों से तमाम चैनल्स के ऊपर दबाव बन रहा है कि जो वोट डिलीट दिल्ली में दिखाए गए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा, लोग परेशान हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी प्रवक्ताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जो वोट कभी दिखाए गए कटे नहीं है, वो कटे नहीं है, अपील में जा रहे हैं। तो अपील में जा रहे हैं तो वेस्ट बंगाल की हालत तो आपने देख ही लिया। 1.37 करोड़ का फैसला हुआ है, 25 लाख का फैसला हुआ है, जिसमें से 96% वोट जेन्युइन पाए गए हैं। इसका मतलब जो वहां पर इलेक्शन कराए वो रिक्त थे, उनको नल एंड वॉइड होना चाहिए। कोर्ट भी कहां पहल कर रही है, कोर्ट भी इसमें डिले कर रही है, कोर्ट को भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, इससे एक सवाल जो बड़ा पैदा होता है, मैं यही कह दूं उस बात को कि आज दिल्ली के अंदर जितनी भी सुविधाएं मिल रही है लोगों को, 2.30 करोड़ लोगों को जो उनकी पॉपुलेशन है, सच्चाई में वास्तव में पॉपुलेशन 3 करोड़ से कहीं ज्यादा है।
1: गुप्ता जी, आपका टाइम खत्म हो गया है। आई विल कम बैक टू यू फॉर योर 2 मिनट्स टाइम। आई वांट टू ब्रिंग इन घनश्याम तिवारी इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। मिस्टर तिवारी, योर पार्टी इज हेडेड इनटू एन इलेक्शन इन द नेक्स्ट 6 months इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑलरेडी अबाउट 13.4%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और रादर 13.2% इज द परसेंटेज दैट हैज बीन डिलीटेड। अबाउट 2 करोड़ ऑफ द उत्तर प्रदेश वोटर्स हैव बीन टेकन आउट ऑफ द एसआईआर। आर दे एप्रिहेंशंस व्हिच द समाजवादी पार्टी हैज इन दिस?
3: Good evening, Priti, to you, the viewers, and my fellow co-panelists. When history will judge this episode, this will be called blatantly as an attempt to murder the Indian democracy. Attempt to murder the Indian democracy, and the people who are conspiring

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
1: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। पूरे देश में ये छात्रों की गुंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गुंज बहुत मदद करेगी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: EU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

हामिद अंसारी साहब ने एक किताब को कोट किया है जो 2019 में लिखी गई है, और बकौल उनके नेहरू जी ये कह रहे हैं कि उनके लिए कम्युनिज्म उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू राष्ट्रवाद। इस बात के लिए मैं हामिद अंसारी जी को बधाई देना चाहूंगा। कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। कम्युनिज्म यानी वामपंथ एक खतरा था, नेहरू ये मानते थे, और नेहरू का संदर्भ वो लेके आए। और इससे यह भी साफ हो गया है कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बातों में जो कुछ दिखाई पड़ता है, इसकी कहानी खानदानी है, यह कोई अकेले अभी की बात नहीं है।

0: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान के बाद राजनीतिक बवंडर मच गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इमाम इमाम उमेर अहमद इलियासी। इमाम साहब, आपने भी वो बयान जरूर देखा होगा जिसमें हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि राइट विंग कम्युनलिज्म देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप इसको किस तरह से देखते
1: हैं? देखिए, उनका कोई ये नया बयान नहीं है, उन्होंने पहले भी इस तरह के कंट्रोवर्सी बयान पहले भी दिए और उसके बाद अब इन्होंने फिर दोबारा से इस तरह का एक कंट्रोवर्सी बयान फिर दिया है। पहली बात तो यह है कि हम उनके इस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज उन्हें मुसलमान याद आ गया। जब वो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे तब वो सेकुलर थे, आज उन्हें मुसलमान याद आ गया। जिस तरह से उन्होंने ये जो बयान दिया है, अब मुसलमान उनकी या किसी की भी सियासत में बातों में आने वाला नहीं है। ये बयान भड़काने वाला बयान है, ये बयान गुमराह करने जैसा बयान है। आज जब उनके पास कोई मुसलमान मिलने तक नहीं जा रहा, तब उन्होंने ये सोचा कि फिर मुसलमानों पे सियासत की जाए। मुसलमान समझदार है, मुसलमान इन सब बातों को समझता है।
2: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
3: Good evening and welcome. You're watching India Today. I'm Ritanshu Bhattacharya. Let's begin with the top headlines at this hour. Horrific incident comes to light from Bihar. Minor girl and her male friend groped, thrashed in Jammu district. 3 minor accused arrested in the case. SIT probe launched. Search is on for more accused. The probe into the Tamil Nadu sex scandal widens. 7 victims in total who were sexually assaulted by Granite Baron Veeramani and others have been identified. Tamil Nadu Chief Minister Vijay directs cops to ensure that nobody is spared. IITB Faculty Forum stages campus protest in support of Professor Surya Narayana, who was removed from deanship. This comes amid outrage over the death of second year student Sahil Vakode. SI notices issued to high-profile figures across national capital, including EM S. Jaishankar, former Army Chief Upendra Dwivedi and CBI Director Praveen Sood. A massive political war erupts. Ex-Pakistani Prime Minister Imran Khan's 3 sisters arrested for 30 days under the Maintenance of Public Order Ordinance before PTI's Islamabad march on September 27th. All sisters have been kept in Lahore jail. An American media giant sued U.S. President Donald Trump over White House access. Media outlets claim the right to freedom of speech is being restricted.

0: are watching India Today.
1: Welcome back. Now, India had never won an Asian Games medal in the sport of MMA, but all of that has changed in the early parts of Monday morning. Suchika Taryal settled for a bronze medal after a close loss in the semi-final, but her journey to becoming India's first ever medalist in the Games is nothing short of inspirational. Here's a look at how judo practice for self-defense led her on the way to MMA glory.
2: Suchika Taryal scripted history at the 2026 Asian Games, becoming the first ever Indian to win an MMA medal at the multi-sport event.
3: ये मेडल मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और मेरे कोचेस ने मेरे ऊपर बहुत हार्ड किया है हार्ड वर्क करा है मेरे फैमिली ने मेरे ऊपर बहुत एक्सपेंसिव चीजें मुझे मतलब मेरे ऊपर खर्च करी है और मुझे सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए तो ये मेडल मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है मतलब मेरी लाइफ से भी ज्यादा.
2: Interestingly, her journey in MMA began with judo training, which she initially took up for self-defense. Hailing from Rohtak, Haryana, Suchika was inspired to practice judo following a harrowing incident of Eve teasing. That decision marked the beginning of a stellar career in judo. She went on to represent India at over 20 international events and claim 8 national judo championship titles. Her achievements included gold medals at the 2019 Commonwealth Judo Championships and the 2019 South Asian Games, as well as a silver at the 2018 Commonwealth Judo Championships. She also competed at multiple Asian Judo Championships and represented India in the women's 57kg category at the 2022 Commonwealth Games in Birmingham. However, judo was only the beginning of Suchika's combat sports journey. She later switched to jiu-jitsu and reached the top of the sport in 2024, winning gold in the adults jiu-jitsu contact female 63kg category at the JJIF Jiu-Jitsu World Championships. Suchika had made a winning MMA debut in 2017, but stepped away from the sport for 7 years to focus on judo and jiu-jitsu competitions. In December 2024, she returned to professional MMA at Brave CF 92 in Bahrain after signing a multi-fight deal with Brave Combat Federation, marking the start of a new chapter in her fighting career that culminated with an Asian Games medal. With Asia's glory now sealed, Indian MMA fans will hope this is just the beginning and that more such glory will come her way.
1: Rudransh Patil added to India's medal tally at the Asian Games by not only helping the team win silver in the men's 10-meter air rifle event, but also bronze in the individual men's 10-meter air rifle event too. In this exclusive interaction with Sports Today, he talks about the secrets behind India's recent success in shooting and the young talent coming through. Listen in.
4: Over the years, Rudransh shooting na bahut impressive performance world stage par karte ja raha hai, especially hamara jo contingent jata hai. आपने क्या क्या चेंजेस नोटिस किया और हम क्या बेहतर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ना परफॉर्मेंस हर साल हर इवेंट में बेहतर हो रही है?
5: आई थिंक इट स्टार्टेड सब कुछ फ्रॉम खेलो इंडिया स्कीम्स कि खेलो इंडिया स्कीम्स के कारण 2020 में फॉर एग्जांपल मैं आई एम इन जीएफजी फ्रॉम 2017 में आई वॉज देयर इन खेलो इंडिया स्कीम टॉप स्कीम एंड ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट आर प्राइवेट एनजीओ. So because of this early detection of my talent in 2020, I was around 14 or 15 around that age, and I got the sponsorship at the right moment, at the right time, right mentorship at the right time. Dheere, I was able to build a score, but main akela nahi tha when I was selected. There were a lot of people who were selected with me. But jaise se hum log khelte gaye, mera performance dikhte gaya, mera talent dikhte gaya, I was supported even more. I was directed towards the right direction even more, or performance aur better hote gaya. Even the old athletes, jaise Gagan sir ho gaye, Suma ma'am ho gaye, who have opened their own academy, Anjali ma'am ho gaye. Every athlete, every top athlete has opened their own academies, and wo log jo unko nahi mil paye, wo hum logon ko de rahe hain. उसके कारण क्या हो रहा है कि जो उनको करने में 10 साल लग गए वो हम लोग 2-3 साल में नहीं तो 4 साल में मैक्सिमम कवर करके आगे बढ़ पा रहे हैं, खुद के एक्सपीरियंस ज्वाइन कर पा रहे हैं. पहले फैसिलिटीज में इशू हो रहे थे, अभी वी हैव लॉट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस एंड एमओ वेपन, ये दिस आर नॉट नो मोर कंसर्न्स, दैट एमओ दिस वेपन एंड इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स आर नो मोर आर कंसर्न्स. आर कंसर्न्स इज कि हाउ बेटर सिलेक्शन पॉलिसी वी कैन हैव टू हैव द बेस्ट एथलीट ओवर देयर. पहले एथलीट्स, नंबर ऑफ एथलीट्स भी काफी कम थे, नाउ ऑलमोस्ट 14-16,000 एथलीट्स आर प्लेइंग नेशनल्स. सो व्हेन वी आर प्लेइंग अमंग सो मेनी पीपल, जो हमारे टॉप 3 रैंक, टॉप 4 रैंक है, दे आर ऑलरेडी इन द बेस्ट इन शेप ऑफ देयर लाइफ, ऑलरेडी द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. हम लोगों का बस ये होता है कि कौन सा पर्सन इज इन द बेस्ट फॉर्म एट दैट मोमेंट टू बी टेकन इन टू द टीम.
4: जैसे कि कल एला कह रही थी कि उसने रिक्रिएट करने की कोशिश किया, रेप्लिकेट करने की कोशिश की जापान की कंडीशंस को, जल्दी उठना, लॉन्ग रूट लेकर वहां तक पहुंचना. आपने भी कुछ ऐसा किया कि हम अपने आप को यहाँ के लिए एक्लिमेटाइज करें, पहले से उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके जाएं?
5: या तो हम लोगों के दो कैंप्स थे भोपाल में ही, इंडिया ने ऑर्गेनाइज किए थे, जो उसमें हम लोगों को पूरा एक ब्लूप्रिंट दिया गया था कि ओके आपको इतने घंटे सोना